जग मगत तेज पूरन प्रताप अंबर जमीन जे जपत जाप सातों आकाश सातों पातार बिथरे उदृष्ट।

रंग बिरंग नेक ना जापन कर तबा अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कारण आनंद बधाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर।

साहब तेरा सचिया बादशाह जियो में साहब तेरा कहो नानक साहब तेरी वड़ी आई वाड़ी कहो नानक साहब।

मेरा सचिया पाए दिशा कोई ना वो ना जा ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

का खला खींचा अरदास सर्वत्सम खालसे जी की अरदास श्री वाहेगुरु जी के पास जहाँ जहाँ गुरु खालसा साहेब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत विरद की पाए द्रह पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी दे बोल वाले बोला रे खालसे जी का मानी वाह मातु ची मात पत दा राखा आप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चेत आवन का सदका सर्व सुख होवे खालसे जी की देख तेख फतह चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे धर्म का जयकार खालसा री सावे बोला रे खालसे जी नु नाम दान सिखी दान गुरमत दान बुद्ध विवेक रात रक्षा दान खालसे जी नु श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर सरोवर जी दे इशनान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार मेले बुलारे श्री अकाल तख्त साहिब जी बाबा टाले जी संतोख सर जी विवेक सर जी राम सर जी काल सर जी तरन तारण दी तापयाने दी खडूर जी गुरु की बावली श्री गोविंदवाल।

स्वप्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंग रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभि

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि पृच्छस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अङ्भजस्तु अङ्रटस्तु अङ्ठटस्तु।

भूत बन चारि छित छौना सब दूत धारी पौन के आहारि सो भुजंग जानी अत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजय ते तुगौन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी ते नौ जानी वह बखानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सो जिरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को कंगेरी सी कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि

ताप के सहित जो पाई है अताप ना तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पाये जाप देव बूदना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़े ते जो पे नारायण पाई है ते अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बास की उपजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रास करही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही की सेव सब ही कुगुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के वेश को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाव है। अल्लाह अफेक सोई पुराण ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रत अच हो पचा।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

न कर्मं न भ्रमं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न धामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं वेखं जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्धरूपं।

योगं नमो हं नमातं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखं अवेखं जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे।

सनाथ उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न बाते न सत्र न मित्र सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो निय छयाद अद्वया जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग।

तोकं न साकं परे अंग पवित्रं पुनीतं गतकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सतं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के भरम्बूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के बेज के धर्म धामे।

मसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग हो भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की दृष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी वस्तवी।

भूत तेज अंश जगात करता सदैव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र व्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चयन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अग्निहोत्र कई पौनहार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भक्ष नहीं तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधरा बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्निहोत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश वाखार टंत कई देश देश विद्या बणंत कई कर्त पांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अग्निहोत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ असुमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ बिरद चार कहूँ कर्त जक्ष गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई बचत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग ब्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदपदेश देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग

जे चार चतुर्थ चक्र फिरंग जय राग न रंग न रे खरुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भो भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा।

कृपानित पान पर जय फूकर धर्म सब तज है एक चित्त कृपानित को जप है ते या बवसा कर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है।

है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग तक है अभूत ब्रह्म भेक है न तात्मात जात है न पाद चिहन वरण है अदेक शेख भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिगे सदीव करम भरम है अद्वेक है अभेक है अलेख नाद जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म

न शंक है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साको कुमार है न ने है न गे है न दे को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है गरीम है कुरान है वेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ

ਹੈ ਸਦਾ ਛਿਜਦੇ ਜਵਾਨੀਏ ਛੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖੀਐ न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रे खरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि न राधपि ग्रंथ सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आद जे बडे तपस्त भी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है सदीव सर्वलोक के

जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखेर में उजे चक्र चहन ना चित्र आद देव उदार मूर्ता गाद नाथ अनंत आद अंत न जानिए अपखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सन कौ सन के सनंदन पाव ही न सेब जछ किन्नर मछ मांस मुर्ग और का पार नेत नेत पुकार ही शिव सक्रो मुख चार सर्व शब्द बतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद दे जनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देव दानो न भ्रम क्षत्रिय माहे वैसनंग के विखे विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ भील भी कर ब्रह्म से स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा का स्वरूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा घोर के नाधीन सर्व सबद बतार के दर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस वर्ण नेत पूर्ण होत सोध सोध हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महागप करत गाढ़ अनंत हर हर कहो सबू मिल नाम ना।

दीन बंध प्रवीण श्री बल सर्व को करतार बरंजन ना चक्र जा को चक्र चहनाकार जात बात ना गोत्र गाथा रूप रेख ना बरन श्रव दाता श्रव ज्ञाता श्रव भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक ब्रह्माथ दुष्ट हर्ता सृष्ट करता जगत में जय गाथ भूत भव भवेख।

पार भूमका जले थले महमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार।

सिवरु द्रव मुखचार कोटेंद्र उपेंद्र प्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सब चक्रत भय मुखचार आद अंत न मध जा को भूत भव भवान सत दुआ तृतीय।

ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार, हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोद सोद थके महासुर पायो नह पार। त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन, सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ।

जंतर्दंडन असुर विहंडन निकंदन आदि वृते चरा सुर मारण धारण नरक निवारण गुड़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होशि मैं खासुर मर्दन रम कबरदन छते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंसन मैग मथे दान प्रहारन नरक निवारण नतम उदारण उर्धे जय जय होशि मैं खासुर मर्दन रम कबरदन आदि वृते डावरूड वंगे बबर बवंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमगे अति चमके फूंक फनन जय जय होशि मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनन चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून किते दामनी दमंगण ध्वजा फरंकण फणि फुंगारण जोध जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे मैं खासुर मर्दन भूम।

प्रकाशन गोड गते रक्तासुर आचंजुद्ध ब्रह्माचन हृदय नराचंदन अमृते श्रोणत चिंती नल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय ओसी मै खास ज्वाल जयंती आद अनाथ अगाध अच्छे

कत्रियाण कतंगीय भय भंगी आद अनंगीय गाद गते ब्रडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय ओसे मैं खासुर मर्दन विश्व विधुन संसिष्ट करे दामने प्रकाशे उन्दर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रतरखण बितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय ओसे मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रता हे अर्ध लगा हे दुख हरे गंज

दिल्ली द्वंद्वमते अष्टायुध चमकण शस्त्र झमकण दामिंदम गण आदि प्रते डुकडुकी दमंके भागव बंके भुजा परंके शुद्ध गते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आदि जुगाद अनाद मते चछरासुर मारण नरक निवारण।

कौन फेक कह नाम ताज है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चरण नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग रागन छिज तेजन बिजदाग जल थल महीप बंतन दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दीनान दोग दहता उदार

दीनन की व्रत पाल करे नित संतु बार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको व्रत पार है। भूखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम के ब्रीत संभारे। पार न पाए सके पदमावत भेद कते भेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो खुरुहान की रोज नटारे। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देवा देवक पे अंग मेव न भेव लख्यो भ्रम से उभरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसे बधके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पुत स्यो किन श्री पदमापत पाए। आद आनंद अगाध द्वेक सो भूत भवेख भवान अभय है अंत भीन अनाद मापद अगाध ओख छिद्र जय है। लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह भीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त गेह छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह है काहे को डोलत है तुमरी सुत सुंदर श्री पदमापत ले है। रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो भांत बचावे शत्रु अनेक जलावत खावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दह कर पाप सम्मोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सो सो भेट ही के बट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा का पताल रसातर जाच भुजंग सब है सरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न भेद लखेव सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमित तोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बजहारे भेद न पाए सके वन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाध बेगद वैख जप्योत नहीं गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस्त बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख का

चित्त अत्र के चलैया चित्त छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जतैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर तेज गुण गाव तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांध अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरके फिरंगे माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मर टम गेल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैद लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाले दिल्ली के दिल वाले तेरी आगे में चलत है रूह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुदेल बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीस ने